107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह, 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026, 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया।

0: पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो।

जब ईश्वर को सखा भाव में आत्मसात किया जाता है तो भक्ति रस कुछ अलग ही रंग लाता है। मित्र से हंसी ठठोली न हो तो भला किससे होगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं झरोखा में। अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी चंडीगढ़ से जो कार्यक्रम दिन भर आपके लिए पेश किए जाएंगे उनके बारे में आपको बता दें। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हम रिले करेंगे। 10:05 पर सफर सुरीला सा ये प्रोग्राम, इसमें कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीत आपके लिए पेश किए जाएंगे। लक्ष्य कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00। आज इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़ की प्रिंसिपल विन दोसांझ से की गई बातचीत आपको सुनवाएंगे।

दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में, 1:15 पर फिल्म संगीत, 2:15 पर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। शाम 5:20 पर सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे, और शाम 5:30

फरमाइश आपके कार्यक्रम आपके लिए हम पेश करेंगे दिन में 11:30 पर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाते हैं।

हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार सुनिए, शाम 6:10 पर पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। और अब से कुछ ही देर में विविध भारती का कार्यक्रम आप सुनेंगे, 6:35 पर श्री रामचरितमानस, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे भोले बिसे गीत, 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर प्रोग्राम त्रिवेणी, 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज

0: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 237वीं कड़ी।

अयोध्यावासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
2: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound. And that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
1: बिल्कुल।
2: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस भी था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई, ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी।
1: बिल्कुल।
2: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, आसाम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा मिली, उन कीड़े मकोड़ों की वजह से। और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही
1: जी।
2: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है और रावण हत्ता के रूप में बजता था
1: जी।
2: क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे। और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा और लोकवाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की बजेगी और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
2: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है
1: जी। जी,
2: जी। संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी, जी।
2: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी।
2: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया
1: और
2: सा कैसे बजेगा इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है, कोई साइंस नहीं है ना उसमें
1: जी। जी।
2: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है फिर
2: जी,
1: सुरों की संख्या
2: जी। तो उन्होंने तीन होल बंद रखना, तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
2: इतनी क्या बड़ी उनकी। और ये जो छोटी उंगली है उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी, इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह

0: बोल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सा से पा तक बिड़ दे, कि मैं बजा के सुना रहा हूं
1: जी।
0: ऐसे फ्रेज जो बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे। और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने। पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सन इन लॉ, उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी,
1: जी जी,
0: देवेंद्र मुर्देश्वर जी,
1: जी।
0: उसके बाद मेरे गुरु जी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी।
0: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया
1: जी।
0: मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था जन्माष्टमी के दिन। पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था
1: जी जी
0: 2006
1: जी जी।
0: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं। मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है
1: वाह,
0: और हरि प्रसाद जी माँ यशोदा है।
1: क्या बात है, गजब।
0: क्योंकि माँ देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस्ट के बड़ा किया हरि जी ने। उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए।
1: बहुत कम उम्र में चले गए, बिल्कुल
0: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए। तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन चारों के साथ मिलकर हरि जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा तो फिर आप क्या है। मैंने कहा मैं सुदामा हूँ।
1: गजब क्या बात है।
0: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ।
1: अद्भुत।
0: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, खुश हो जाएंगे मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
0: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी अंग जो है
1: जी,
0: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं
1: जी,
0: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना
1: जी,
0: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकती हैं कि वो मैंने सबसे पहले घसीट और आंदोलन
1: जी,
0: जो चीज रुद्र वीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी।
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: खरज खरज का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे, बुजुर्ग बजाएंगे, मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर है, आप मत बजाइए। ऐसी मैंने दृश्यता

0: अति सुंदर, अति सुंदर। तो दादा, ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई, इसकी विशेषता भी बताएंगे हमारे श्रोताओं की, क्या विशेषता है?
1: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में
0: जी, जी।
1: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहां चल रहा था, और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
0: जी।
1: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहां जब सब लोग सीख रहे थे, मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो जी, मेरी जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
0: जी, जी।
1: मैं नहीं कर पा रहा था
0: जी।
1: छोटी उंगली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी आप मध्यम तक इतना जा सकेंगे
0: जी, जी, जी।
1: उसके नीचे क्या
0: जी।
1: तो उस बात ने मुझे विचलित कर दिया।
0: क्या बात,
1: मन व्यथित हो गया।
0: अच्छा,
1: कि जो गुरुजी बजा रहे हैं सितार में, वो मेरे बांसुरी में क्यों नहीं आ रहा है। वहां से मैं भारत आया और काम में लग गया। और जो मेरी ओरिजिनल शंख बांसुरी है, वो अभी घर में उसको मैंने एक याद, एक संग्रह करके उसको मैंने रख दिया है। अब उसको बाहर ले जाने में डर लगता है। उस वक्त एक बैंबू जो आप देख रहे हैं, हाँ, शंख का, इसकी आवाज शंख जैसी है।

0: बजाने से लगता था शंख बज रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो उसलिए मैंने ये नाम इसका दे दिया कि शंख की तरह ये बजता रहे। और मंद्र सप्तक
1: जी
0: मैं चला गया फिर मैं नीचे के साथ तक।
1: बिल्कुल। और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
0: किया भी है दीपक तो, करके लालमणि सिंह वो सरदार हैं
1: जी,
0: तो उन्होंने पूरा पीएचडी ही किया मेरे ऊपर।
1: क्या बात है।
0: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूलचूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा की जो होती है ना, ताना ना ना ना, ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का थाना है
1: जी, जी,
0: जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने जाते थे।
1: क्या बात है। तो ये जो जानकारियों का खजाना है, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम दे रहे हैं क्योंकि हमारा आज की कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। कल ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती।
1: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

तलत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: नूर जहां की आवाज में दुपट्टा फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मुशीर काजमी के बोल, फिरोज निजामी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर भूले बिसरे गीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: तलत महमूद की आवाज में कमर जलाल आबादी के बोल आप सुन रहे थे। पंडित हुसनलाल भगतराम का संगीत आदिले जहांगीर फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में उड़न खटोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा दें। मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420। सुनिए ये गीत।

0: श्री 420 फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना और इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के, बस कुछ ही पलों के बाद।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की। बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या?
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की। बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का ये गीत, नीरज ने से लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम हैं राही प्यार के विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा शैली शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो।

0: बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मन मंदिर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मेला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

परवाना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में कैफ निज़ामी के, माफ़ कीजिएगा, कैफी आज़मी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की, फिल्म पराया धन।

अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए पराया धन फिल्म से इस गीत को सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गाने के साथ ही अब आज का हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्ट

0: करण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता

0: फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे।

0: ये पहला मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चार धाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8:15 हुए हैं। अगला प्रोग्राम त्रिवेणी।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

दोस्तों, सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान

0: देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।
1: हाँ।

0: है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।
0: भला

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
1: दो चीजें आप इकट्ठी हो जाती हैं, एक तो बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो दे आर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, है ना, पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, तो अगर किसी को भी खांसी जुकाम है तो एक दूसरे में बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, फुटबॉल रिलेटेड भी बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है एक दूसरे में। इस टाइम पे मानसून का भी रीजन होता है, वायरल इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्रेफरेबली कुछ दिन घर पे रेस्ट कराइए, उसको स्कूल मत भेजिए। और दूसरा, खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे घर का ही खाना दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए।
0: यह संदेश एलएमबी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का गीत। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा, आरकू प्रावो मुखर्जी का संगीत। भाई हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका हाल कैसा है, क्या आज आपकी नींद पूरी हुई?
1: मैं माँ बनने वाली हूँ,
2: बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

दलेर मेहंदी, डीएमसी और शाश्वत सचदेव की आवाज में आप सुन रहे थे उरी फिल्म से ये गीत, और इसे लिखा डीएमसी ने और संगीत से सजाया शाश्वत सचदेव ने। तो हमने आपसे पूछा था कि क्या आपकी नींद आज हुई है पूरी, और कुछ इसी तरह से सूरमा बनकर हम करते हैं ये काम कि अपनी नींद को कर देते हैं बिल्कुल नज़रअंदाज और कभी भी पूरी नहीं होती हमारी नींद। और ऐसी शिकायत भी अक्सर बनी रहती है कि भाई जिंदगी में सब चीज़ें पूरी होती हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती, जबकि नींद शरीर की सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। और जब हम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारा शरीर स्वयं को मरम्मत करता है खुद की, या कहें कि जो थकान होती है अंगों में, कहीं तकलीफ होती है, वो सब दूर करने के लिए शरीर को भी इतना वक्त चाहिए आराम का। लेकिन हम तो बने रहते हैं सूरमा और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ ना कुछ काम करते रहना है। खासतौर से इन दिनों जो हम काम करते हैं वो ये है कि देर तक जागते हैं फिर देर तक सोते हैं, लेकिन एक समय निश्चित है जिसमें शरीर मरम्मत का काम करता है। उस ज़्यादा देर अगर आप सोते रहते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता, ऐसा तो वैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं कि जो एक वक्त निर्धारित है नींद का, कह सकते हैं रात का जो समय है, उस समय अगर आप सो जाते हैं, देर रात तक अगर आप जागते हैं, तो आपके शरीर को उससे नुकसान ही है। और उसके बाद भले ही आप घड़ी देखकर 7-8 घंटे की नींद ले लें लेकिन उसका उतना फ़ायदा तो नहीं होता। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है?

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और हम आपको याद दिला दें कि सुबह 10 आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, जिसके अंतर्गत आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक और समीक्षक के साथ ही लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और आपको ये भी याद दिला दें कि दोपहर 1 से रोजाना आप सुनते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको मिलेगा विविध भारती का पेज। और वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का ये गीत, वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नींद की, क्योंकि बाकी सब तो जिंदगी में बढ़िया है लेकिन नींद का क्या करें जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए हम देर तक जागते हैं और देर तक सोते भी हैं। कुछ लोग, सबको तो सोने का नहीं मिलता देर तक, तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई भी काम हमने किया हो और उसका श्रेय किसी को मिले तो हमें बुरा लगता है। वैसे किसी और ने कुछ गलती की हो और उसकी वजह से अगर हमें सजा मिले तो भी बुरा लगता है। तो अक्सर जो नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती उसका दोष मिलता है मोबाइल को, और साथ ही जब हम जाग रहे हैं लेकिन सारा दोष मिल रहा है मोबाइल को, कोई सीरीज को कि भाई इतनी अच्छी थी कि हम देखते रह गए, या फिर दोस्तों को कि भाई उनका फोन आ गया था या हमारे दोस्त आ गए थे हमें बुलाकर ले गए। तो ये क्या तरीका है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम

क्या करने वाले हैं, निर्णय तो हमारे ऊपर ही है ना। चलिए ठीक है, दोस्तों पर आपका काबू ना चल पाए लेकिन मोबाइल पर और किसी सीरीज को देखने पर तो आपका बिल्कुल काबू रहता है। मोबाइल का भी आपके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, जहां टीवी पर कुछ भी चीजें देख रहे हैं, उसके लिए भी रिमोट भी आपके हाथ में ही है। तो जरा याद कीजिए वो दिन जब आप समय से सोते थे, समय से जागते थे, और उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि भाई वो दिन क्या दिन थे।

तुषार जोशी की आवाज में छिछोरे फिल्म का गीत आपने सुना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

स्टीवन बेन और दीक्षा तूर की आवाजों में आपने सुना सनक फिल्म से ये गीत, मनोज यादव और समीर अंजान के बोल, नदीम श्रवण और चिरंतन भट्ट का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि इस समय में मुझे सोना है, और रोज़ाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह देखने के लिए ना करें फ़ोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोज़ाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएँ हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फ़ोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त,

तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है। तो वो जो बहुत ज्यादा खुश रहता है या बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर और रोजाना, और ये जिद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी जिद है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जिद जरूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और इसलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैगज़ीन ले आऊँगा।

0: स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हो चुके हैं। अगला कार्यक्रम है आज का अखबार।
4: आज का अखबार।
3: दोस्तों नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। सबसे पहले आज की अखबारों में जो खबर है वो है बाबा बर्फानी की, श्री अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हो रहा है। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन की पवित्र यात्रा दोस्तों 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। जम्मू से आज रवाना हो रही है, लेकिन पहलगाम और बालटाल मार्ग से 3 जुलाई यानी कल शुरू होगी। इस पवित्र यात्रा

के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गए। 57 दिन की इस पवित्र यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भक्त जन बम बम भोले के जयकारों के साथ निकल पड़े हैं इस पवित्र यात्रा पर।

और दोस्तों, अब मानसून की बात करें तो मानसून जो है उसकी एंट्री हो चुकी है पंजाब हरियाणा में। मानसून आ पहुंचा है हिमाचल प्रदेश, जम्मू में बादल फटे हैं। पठानकोट के रास्ते पंजाब पहुंचा मानसून। आज पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं, यानी पंजाब में आज बारिश होने के आसार हैं। हरियाणा में 6 दिन की देरी से दस्तक, 7 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस तरह से हम आपको बताएं कि 4 जुलाई से 5 दिन देश भर में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि जुलाई में 6% कम बारिश होने की आशंका है। करनाल से गुरदासपुर तक गुजरी मानसून की लाइन, चंडीगढ़ में 7.3 डिग्री गिरा तापमान। सो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के लिए तैयार रहें और बारिश में अपना पूरा ख्याल भी रखें।

वैसे दोस्तों, अब राजस्थान और दिल्ली को इस बारिश का इंतजार है। मानसून की उत्तरी रेखा गुजरात के पोरबंदर, मध्य प्रदेश के शाजापुर, नौगांव, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, अयोध्या, मेरठ से गुजर रही है। अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है।

स्वागत है दोस्तों आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का। और अब एक नजर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार से जुड़ी खबरों पर। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज को भारत पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने ये कहा है कि बात हो रिश्ते सुधरें। थार समझौता एक्सप्रेस फिर चले, एयर स्पेस खुले, दोनों में क्रिकेट सीरीज शुरू हो।

नए सेना प्रमुख धीरज सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता को सैल्यूट किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

चीन सीमा पर तैनात होगा आईबीजी, प्रौद्योगिकी युक्त सेना तैयार करना लक्ष्य, नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा। 5 एकीकृत युद्ध समूहों के गठन की शुरुआत आईबीजी, हर एक समूह में होंगे 5,000 सैनिक,

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किए नए नियम। नौकरी पेशा के 1 साल, व्यापारी के 3 साल का ITR तय करेगा मुआवजा। व्यवसाय स्वरोजगार में आय स्थिर नहीं,

भारत जापान में निवेश और सामरिक साझेदारी बढ़ेगी, चमक सकते हैं बाजार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ताकाइची की यात्रा रिश्तों को नई ऊंचाई देगी। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिवसीय यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। भारत और जापान के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध नए दौर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। सम्मेलन के केंद्र में केवल कूटनीतिक मुद्दे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता जापानी निवेश भी है। भारत जापानी निवेशकों के लिए प्रमुख दीर्घकालिक निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। डिजिटल इंडिया की बात करें तो

डिजिटल इंडिया के 11 साल दुनिया में भारत को मिली नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सर्वांगीण विकास को दी गति डिजिटल इंडिया ने। द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन की सुरंग। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, 6,969.67 करोड़ से बनेगी 8.1 किलोमीटर लंबी सुरंग। हेडलाइंस का सिलसिला जारी है। फिलहाल यहां बारी है एक म्यूजिकल नंबर की।

0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। और बात करते हैं कॉमर्शियल सिलेंडर के बारे में। सबसे पहले वाणिज्यिक सिलेंडर के बारे में, जो 183 रुपए सस्ता हुआ है। और एक निजी पेट्रोल कंपनी न्यारा ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटा दिए हैं। विमान ईंधन में भी 5 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। और ऐसा क्यों हुआ है? पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में ये कमी आई है, यानी 183.50 रुपए और विमान ईंधन में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। 3930 वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत दिल्ली में है, 808.50 रुपए का हुआ 5 किलो वाला सिलेंडर 13 रुपए सस्ता।

वेनेजुएला में चलें तो भारतीय सेना ने मलबे से 79 वर्षीय महिला को बचाया। महिला के ठीक होने की उम्मीद। राहत कार्य जारी है। पश्चिम एशिया तनाव की बात करें तो कतर बैठक हार्मूज पर पूरी तरह से नियंत्रण और जहाजों से शुल्क वसूली चाहता है ईरान। इसके लिए बल प्रयोग को भी तैयार है अमेरिका। ईरान शांति समझौते में तकनीकी पेच।

कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर एक नजर। घरेलू मांग और निर्यात के दम पर वाहनों की मजबूत बिक्री। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात ने जून में भी भरी सरकार की झोली। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा। वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज।

और कुछ खबरें खेल जगत से। पहली बार पहले हाफ में पिछड़ने के बाद जीता इंग्लैंड। डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में पहुंचे थ्री लायंस। केन ने 2 गोल कर बनाया रिकॉर्ड। ये बात है फुटबॉल विश्व कप की। एक सौ 135वें डूरंड कप का कार्यक्रम

घोषित 24 टीमें 5 शहरों में दिखाएंगी दम। 23 अगस्त को कोलकाता में फाइनल, पहली बार रांची बनेगा मेजबान। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल सबसे बड़े दावेदार। ये फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की बात हो रही है। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर बनाए थे 189 रन। ये तो थी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब की बात करें, बठिंडा से जुड़ी खबर है, खड़े ट्रक से टकराई 12 श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर, 2 दंपतियों की मौत, 8 जख्मी, नींद की झपकी आना हादसे की वजह, घायल बठिंडा एम्स में भर्ती। पीटीएल पटियाला की बात है, नियमित करने की जिद पर अड़े पावरकॉम में तैनात आउटसोर्स कर्मी, पेट्रोल की बोतलें लेकर जर्जर टंकी पर चढ़े, पटियाला पूरी तरह से ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। पंजाब में जीएसटी राजस्व में 24.45% की वृद्धि, पहली तिमाही में 7,833 करोड़ जुटाए गए। शहरों और उद्योगों का प्रदूषण सतलुज ब्यास के संगम पर बसे हरिकेपत्तन तक पहुंच रहा है। पंजाब में मामा तिया सरकार योजना शुरू हो गई है। पंजाब में पहुंचा है मानसून, 7 तक खूब बरसने का अलर्ट है। और खबर है लुधियाना की, रोजगार में लुधियाना आगे है, 63% नियमित वेतन भोगी, विनिर्माण और ऑटो कपड़ा ने बढ़ाए यहां रोजगार। हरियाणा में भी मानसून पहुंचा है, 7 तक खूब बरसने की चेतावनी दिखाई गई है। बारिश ने हरियाणा का बदला मौसम का मिजाज, धान रोपा

में आई तेजी किसानों के चेहरों पर लौटी आशा। कलेसर नेशनल पार्क छछरौली का जंगली हाथी मस्ती में हाईवे पर उतर आया। रिमझिम बारिश में चहलकदमी करता रहा, रुका रहा ट्रैफिक। गांव धनयौड़ा अंबाला शहर में कल से चल रहे बचाव अभियान के 21 घंटे चलने के बाद भी खुले बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया ना जा सका। नकली दवा बनाने वाले गिरोह की जांच के सिलसिले में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

0: हरियाणा को 337 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और हिमाचल से जुड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए रोजगार मौके सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। किसके चलते? क्योंकि हिमाचल के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला GI टैग। हिमाचल में एंटी चिट्टा अभियान में मेडिकल से जुड़े प्रैक्टिशनर्स का निरीक्षण, मिली अनियमितताएं, कानूनी कार्रवाई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर के पूह में सुनी लोगों की समस्याएं। और लोकल हेडलाइंस में, मानसून की पहली फुहार से राहत, पंचकूला में 7.3 डिग्री लुढ़का पारा, सुबह से दोपहर तक हुई बारिश, 10.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, 5 से 6 जुलाई को तेज बारिश का अलर्ट बताया गया है। पंचकूला को कचरा मुक्त बनाने की तैयारी, 6 करोड़ का अपिष्ट ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित, अम्बाला क्लस्टर के 5 शहरों के कचरे से बनेगी बिजली, हर घर पर लगेगा QR कोड। ये तो थी स्थानीय सूचनाएं। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपना ख्याल रखते हुए अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए।
1: आज का अखबार।
0: अभी आपने आज का अखबार कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजरनेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर

0: उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले पंकज उद्धास से।

अभी आपने पंकज उधास को सुना। सफर सुरीला सा कार्यक्रम में अगला गाना फिल्मी है और ये गाया है मीत ब्रदर्स जुबिन नौटियाल और ध्वनि भानुशाली ने।

अभी आपने जुबिन नौटियाल, ध्वनि भानुशाली और मीत ब्रदर्स की आवाजों में ये गीत सुना, मरजामा फिल्म से। सफर सुरीला सा कार्यक्रम में अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। निखिता गांधी की आवाज में ये गीत।

अभी आपने शोर फिल्म से ये गाना सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसे लिखा राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: अभी आपने जगजीत सिंह को सुना।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर रिधि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन मोहाली से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
2: दो चीज में आप इकट्ठी हो जाते हैं, एक तो बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो दे आर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, है ना, पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, तो अगर किसी को भी खांसी जुकाम है तो एक दूसरे में बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, और बॉन एलर्जेस भी बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है एक दूसरे में। इस टाइम पे मानसून का भी रीजन होता है, वायरल इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्रेफरेबली कुछ दिन घर पे रेस्ट कराइए, उसको स्कूल मत भेजिए। और दूसरा, खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे घर का ही खाना दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए।
1: यह संदेश एलएमबी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।

पर सुरीला सा कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम आपको बताएंगे दिन में 11 बजे लक्ष्य कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़ के बारे में। ये जानकारी देंगे प्रिंसिपल विन दोसांझ। और 11:30 पर फरमाइश आपकी कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर। अब बारी है सफर सुरीला सा कार्यक्रम की अगली रचना की। ये क्लासिकल रचना है मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। ये फिल्म है तलाश।

अभी आपने मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत सुना, तलाश फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे संगीता एस डी बर्मन का। और अब समाअत फरमाइए एक गजल, आवाज है आशा भोसले की।

यशुदास को अभी आपने टूटे खिलौने फिल्म से सुना बप्पी लहरी के संगीत में। अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की।

लता मंगेशकर को अभी आपने ब्लैकमेल फिल्म से सुना, सफर सुरीला सा। इस कार्यक्रम के आखिर में आपको राकेश मीना की आवाज में ये रचना सुनवा रहे हैं।

0: अभी आपने राकेश मीणा की आवाज़ में ये भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा ये कार्यक्रम समाप्त तो हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। अगला प्रोग्राम लक्ष्य। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में आपको मालूम है आपके करियर से जुड़ी हुई जानकारी हम ले आते हैं और आज ये जानकारी हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़ विन दोसांझ। विन दोसांझ जी महिलाओं के लिए इस विशेष संस्थान के बारे में हमें जानकारी देंगी। क्या क्या कोर्सेज हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो सबसे पहले विन दोसांझ जी, प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले आपके कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, ये कॉलेज कहाँ स्थित है?
1: सेक्टर 10 चंडीगढ़ में स्थित है, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज के साथ इसकी कॉमन दीवार है, DAV कॉलेज के हॉस्टल के पीछे है और बिल्कुल मेन रोड पे अंदर जो सड़क स्केटिंग रिंग की ओर जाती है वहाँ पर ये स्थित है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है जो कि टेक्निकल एजुकेशन प्रदान करती है, तकनीकी शिक्षा।
0: तकनीकी जो शिक्षा है वो प्रदान करता है आपका कॉलेज?
1: बिल्कुल जी।
0: तो विन दोसांझ जी, तकनीकी शिक्षा की बात आई है तो आप हमें थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए, कौन कौन से फील्ड्स हैं?
1: बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो ट्राई सिटी में जिनसे मैं मिलती हूँ, मेरा आमना सामना रूबरू होते हैं, तो बच्चों को नहीं मालूम कि टेक्निकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा क्या है। सो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस बात को कि आज की तारीख में तकनीकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इट्स अ थिंग विच कैन डिवेलप योर टेक्निकल स्किल्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट

0: फॉर गेटिंग जॉब्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क.
1: कोई भी स्किल है उसको टेक्निकली आप इम्प्रूव कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. आज का जो जमाना है वो हुनर का जमाना है. अगर आपके हाथ में हुनर है, आपको कोई भी स्किल आती है, तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रह सकते. कहीं ना कहीं कहीं भी आपको जॉब मिल जाती है और लोग आपके हुनर को बहुत ज्यादा सराहते हैं
1: और आप उस हुनर को निखारते हैं, संवारते हैं, उसे क्रैक देते हैं,
0: हम राह उनको देते एक राह दिखाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. और क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है ये पॉलिटेक्निक, तो ये बहुत अच्छा है कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं इतने स्कूल्स में, उनको ये ही नहीं मालूम कि यहाँ 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटी कैंडिडेट्स, जिन बच्चों ने 10th या प्लस 2 चंडीगढ़ के स्कूलों से किया है, उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड है एंड 15% सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम अदर स्टेट्स.
1: जी, ये तो बहुत अच्छा प्रतिशत है.
0: बिल्कुल,
1: 85% यूटी से जो जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए है.
0: उनके लिए है. और देखिए, हर कोई आज की तारीख में कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कहीं भी अगर आपके हाथ में स्किल है तो ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनके साथ आप डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जो है वो डिप्लोमा देता है. सो ये डिप्लोमा से रिलेटेड सारे हैं कोर्सेज.
1: तो डिप्लोमा स्तर के कोर्सेज हैं आपके, तो कोर्सेज कैसे कैसे मैम?
0: हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इस कॉलेज में 6 प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं. पहला डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड सर्विसेज, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी.
1: आजकल इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है.
0: बिल्कुल, ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज हैं ये. इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो डिफरेंट है हर कोर्स के लिए. जो हमारे यहाँ पे है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, ये सारे 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं 10वीं के मैट्रिक के बाद.
1: मतलब 10वीं करने के बाद आप सीधे आपके कॉलेज में अप्लाई कर
0: सकते हैं. एंड दे आर ऑल ऑन मेरिट बेसिस, कोई टेस्ट नहीं है.
1: तो 10th में क्या परसेंटेज चाहिए?
0: देखिए, 10th में पास परसेंटेज चाहिए, हु हैज पास्ड मैट्रिक और CSS एग्जामिनेशन. जी, जिस बच्चे ने ये पास किया है वो एलिजिबल है विद द पासिंग मार्क्स. That's all and no test is required for this.
1: Merit किस तरह से बनाते हैं? तो बहुत सारे बच्चे होंगे.
0: बिल्कुल जी, वो जो जैसे apply करता है, merit is on the basis of the percentage of marks obtained directly.
1: 10th में जितने
0: marks होते हैं
1: उस तरह से सीटें मिलती जाती
0: हैं. उन तरह से सीटें
1: मिलती
0: जाती
1: हैं. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 10वीं के बाद आपको एक प्रोफेशनल कोर्स में
0: बिल्कुल जगह मिल रही है. यही हम बताना चाहते हैं सारी ट्राई सिटी के लोगों को कि जस्ट आफ्टर मैट्रिक यू आर एंटरिंग अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव सो मच स्काई इज द लिमिट, जहाँ पे आप कुछ भी अपना हुनर कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, और अगर आप और कैरियर एडवांसमेंट चाहते हैं तो कहीं भी पहुंच सकते हैं आप.
1: 10वीं के बाद आमतौर से विद्यार्थी को ये पता नहीं होता कि प्लस 1 और 2 में मुझे करना क्या है.
0: बिल्कुल,
1: आप उसका हाथ पकड़कर उसे एक प्रोफेशनल ट्रैक पर लेके जा रहे हैं.
0: बिल्कुल, यही एक है जो कि हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं. और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी,
1: आपके कोर्सेज जो हैं फ्यूचर ओरिएंटेड हैं
0: 100% जी. रादर दिस इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ द आवर.
1: जी जी जी,
0: दैट इज व्हाट इज देयर. एंड एज आवर वर्दी प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेज दैट स्किल हुनर स्किल इंडिया वी हैव टू डू इट.
1: प्रधानमंत्री जी ने स्किल्स पर
0: जोर दिया है
1: कि अपनी स्किल को निखारो, उसे बाहर लेकर आओ और उसी में अपना करियर बनाओ.
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर एक हुनर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. कोई आपको रोक नहीं सकता, कहीं आपको मांगने की जरूरत नहीं जॉब. लोग आपके पास भाग कर आएंगे कि आप चलिए और
1: एक बार हुनर दिखाइए, आपको तराशने के लिए
0: हम
1: आप जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही हम बता रहे थे. और 2 हमारे कोर्सेज ऐसे हैं, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि प्लस 2 के बाद है. 10 प्लस 2

0: अच्छा, ये दो कोर्सेज जो हैं 10+2 के बाद
1: है, बिकॉज और ये है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस 3 साल का है, लेकिन फार्मेसी का जो डिप्लोमा है वो 10+2 विद साइंस बैकग्राउंड इज ओनली फॉर 2 ईयर्स। उसमें देखिए, चाहे बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी किया हो, दोनों एलिजिबल है।
0: तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है जो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस?
1: मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में एनी स्ट्रीम,
0: आर्ट्स,
1: ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इवन वोकेशनल कोर्सेज भी इसके लिए एलिजिबल है।
0: बस अपना मन बनाइए, आपके लिए तैयार।
1: बिल्कुल, बच्चों को तो बस इस राह दिखाने हम टीचरों का काम है।
0: जी जी,
1: बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि बच्चे पथ भ्रष्ट ना हो, एक अच्छा कोर्स चुने जिससे उनको बाद में ऐसा ना लगे कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, जबकि इतनी अपॉर्चुनिटीज है कुछ करके दिखाने के लिए।
0: मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये कोर्स है क्या और इसमें क्या क्या शामिल है।
1: बिल्कुल जी,
0: और इसे करने के बाद क्या मौके हैं?
1: बिल्कुल, देखिए मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस जो कोर्स है उसमें हम बच्चों को आजकल देखिए, हम उनके कोर्स में जो सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट कर दी गई है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क चल पड़ा है, सो बच्चों के लिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दोनों पॉसिबल है। सो बच्चा जो भी करना चाहे कर सकता है। इसमें हम इनको टैली पढ़ाते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल इन अकाउंट्स। कोई भी सीए इनको जॉब देने के लिए तैयार है क्योंकि बच्चों को टैली आती है। उसके बाद कमर्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, कंप्यूटर फुली दे आर इक्विप्ड विद द सॉफ्टवेयर ऑफ द टाइपिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑल टाइपिंग वर्क, एंड देयर इज नो कोर्स वेयर यू टीच स्टेनोग्राफी आल्सो। इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस वी आर टीचिंग स्टेनोग्राफी आल्सो।
0: अरे वाह,
1: बच्चे इतने आज की डेट में आपको शायद स्टेनो मिलना मुश्किल है।
0: एक ही छत के नीचे इतना कुछ, वो भी एक कोर्स के साथ,
1: एक कोर्स में। और ये बच्चे इनके तो जहां पे देखिए, एक और बहुत अच्छी बात है हमारे कैरिकुलम में, जो लास्ट सेमेस्टर होता है 6 सेमेस्टर, बिकॉज इट्स अ 3 ईयर कोर्स डिवाइडेड इंटू 6 सेमेस्टर्स, उसमें इट्स 6 मंथ्स टोटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सो दैट द चाइल्ड वॉट एवर हैज लर्नड गेन्ड नॉलेज, जो भी लिया है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग बच्चा किसी इंडस्ट्री में, नोन एज इंटर्नशिप, कहीं भी कर सकता है जहां उसका दिल। हमारे पास इतनी डिमांड आती है,
0: अकाउंट्स का काम होगा, ऑफिस का काम,
1: अकाउंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट, दे कैन बी फ्रंट डेस्क मैनेजर्स इन द बैंक्स, इन द रिसेप्शनिस्ट, इन टूरिज्म, वेयर एवर दे वॉन्ट दैट वी नीड सच ए पर्सन, द चाइल्ड इज गिवन देयर। आप जाइए वहां पे अपनी 6 महीने की वर्कशॉप इंटर्नशिप करिए और आप मजा देखिए, बच्चे जहां इंटर्नशिप करते हैं वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
0: वहीं जॉब मिल जाती है,
1: जॉब मिल जाती है। और चंडीगढ़ में तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारे जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं वो सब हमारे कॉलेज के ही पढ़े हुए हैं।
0: जो आपका आत्मविश्वास है ये बता रहा है कि आपके यहाँ से गर्ल्स हैं, उन्हें मौका मिल रहा है।
1: बिल्कुल जी,
0: काम करने का,
1: कई तो बहुत
0: जॉब के मौके मिल रहे हैं,
1: एंटरप्रेन्योर बनते हैं।
0: जी जी,
1: दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ, एंटरप्रेन्योर इज आल्सो सब्जेक्ट इन दिस कोर्स। इन ऑल दिस कोर्सेज वी टीच देम मॉरल वैल्यूज, एथिकल, along with entrepreneurship also.
0: तो ये तो कोर्स अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है कि एक ही कोर्स में 3-4 चीजें शामिल हैं।
1: बिल्कुल जी,
0: जिस भी तरीके से जहां भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच को लेकर आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, लास्ट 6 मंथ्स तो आपकी ट्रेनिंग इंटर्नशिप है, एंड दैट इज यू आर डूइंग द वर्क ऑन द शॉप फ्लोर ऑफ एन इंडस्ट्री।
0: और अब आप हमें डी फार्मेसी के बारे में भी बता दीजिए, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है?
1: देखिए, जो डिप्लोमा फार्मेसी है वो 10+2 के बाद जिस बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन है, मैथ्स और बायो दोनों चलता है, जहां से भी उसने 10+2 किया है वो एलिजिबल है, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ
0: इंडिया, उसके समकक्ष।
1: हाँ बिल्कुल, जो है वो वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। और इसको ये 2 साल का डिप्लोमा है 10+2 के बाद। और उसके बाद दे कैन गो एज रिटेल केमिस्ट, एज फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स, कहीं पे भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दे कैन गो इन

0: salesmanship as sales promotee. We have got medical representatives. Then they are going into private nursing homes, hospitals, wherever the demand is. आजकल देखिए जन औषधि सेंटर्स, आप सुनकर हैरान होंगे, हमारे तीन गर्ल्स स्टूडेंट्स, दे आर रनिंग देयर ओन जन औषधि इन PGI. दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो इस तरह से आयुष्मान भारत भी उनके काम आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. और उनको
1: मतलब सरकार की जो नई स्कीम्स शुरू हैं वहां भी उनको
0: वहां पे भी उनको मौका मिल रहा है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. और हमारे पास हमेशा डिमांड रहती है
1: इस कोर्स के लिए.
0: तो
1: इसमें कुल सीटें कितनी
0: है? इसमें 40 सीटें हैं हमारे पास, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें भी 40 है.
1: 200 के करीब एप्लीकेशन.
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आराम से आती है. और आप देखिए बाकी कोर्सेज जो है उनमें हमारी 30 सीट्स है.
1: और जो आपने मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का कोर्स बताया था उसमें सीटें कितनी रहती हैं?
0: उसमें 30 है. देखिए दो ही कोर्सेज हमारे कॉलेज में हैं जहां 40 सीट्स हैं, वो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है डिप्लोमा इन फार्मेसी. बाकी जो चार कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, इसमें सिर्फ 30 सीटें हैं.
1: जी, और ये सीटें जो हैं 85% यूटी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए.
0: बिल्कुल.
1: तो चंडीगढ़ में पले बढ़े, यहीं आगे बढ़े और यहीं कॉलेज उनको
0: मिल गया. अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया. और ये डिप्लोमा करने के बाद देखिए, एक बच्चा किसी भी स्ट्रीम में करे डिप्लोमा, उसके बाद वो लेटरल एंट्री में एंट्री ले सकता है किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री कॉलेज में.
1: जी,
0: कंप्यूटर साइंस में भी जा सकता है
1: डिप्लोमा करने के बाद.
0: जी. सीधा लेटरल एंट्री का प्रोविजन है सिवाय आर्किटेक्चर को छोड़ के वो बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपने डिग्री में जा सकता है.
1: लेटरल एंट्री
0: में. और हमारा जो कॉलेज है ये सारी अफिलियेटिंग बॉडी से बिल्कुल अफिलिएटेड है. फॉर फार्मेसी हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अफिलिएटेड है. फॉर टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑल AICT से अफिलिएटेड है. फॉर आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अफिलिएटेड है. और हमारी एग्जामिनिंग बॉडी जो है वो पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन.
1: आपके कॉलेज का जो दायरा है वो बहुत विशाल है.
0: बिल्कुल. इसमें कोई शक नहीं है. बस
1: तो विन दोसांझ जी, अब कुछ हमारे प्रश्न और हैं इस प्रोग्राम में आपके लिए, लेकिन उन्हें हम बाद में करेंगे. यहाँ एक आपकी पसंद का गाना शामिल करते हैं.
0: मुझे लगता है कि क्योंकि ये मैं आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि चंडीगढ़ में कैसे कॉलेज स्थित हैं जो कि उनको स्किल एम्पावर कर सकते हैं. स्पेशली वी हैव थॉट दैट दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किलिंग.
1: ये महिलाओं के लिए विशेष कॉलेज है, पॉलिटेक्निक.
0: तो एक बहुत खूबसूरत गाना मुझे याद आ रहा है, चक दे इंडिया का, कागज की नाव है चल पड़े
1: बादल पे
0: पांव है.
1: चक दे इंडिया फिल्म का ये गाना शामिल करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आज के लक्ष्य प्रोग्राम में हमारे साथ हैं विन दोसांझ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन, सेक्टर 10 चंडीगढ़। आज हमें इस कॉलेज के बारे में बता रही हैं, यहाँ कोर्सेज के बारे में बता रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रही हैं, और किस तरह से जो गर्ल्स हैं दसवीं करने के बाद या 10+2 करने के बाद इस कॉलेज के साथ वो जुड़ सकती हैं। हम आपको फिर से बता दें कि ये मौका इस कॉलेज में केवल महिलाओं के लिए है। ये तो आपने साथ साथ कोर्सेज बताए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपने बताया, ये कोर्सेज करने के बाद मार्केट में डिमांड के मुताबिक कामयाब होने के बाद विद्यार्थी जो हैं वो आपके पास आते होंगे, बताते होंगे कि हम कहाँ कहाँ आज काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी एक एल्यूमिनाई एसोसिएशन भी है जी।
0: तो हमें बताइए कि किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है।
1: बहुत बढ़िया दायरा है जब आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे मकाम पर खड़ा देखते हैं। हम एक जो टीचर है उसकी हमेशा यही एक रहती है कि जो मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, जो मेरा शिष्य है, वो शायद मुझसे भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो। तो जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, फीडबैक परफॉर्मर्स भराए जाते हैं, दे ऑल आर वेरी वेल प्लेस्ड,
0: वेल सेटल्ड,
1: डूइंग वेरी वेल।
0: कुछ अगर आपको याद आता तो बता सकते हैं कहाँ कहाँ।
1: हाँ देखिए, हमारे PGI जनरल हॉस्पिटल में तो फार्मासिस्ट सारे ही लगे हुए हैं डिस्पेंसरीज में, और जो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के बच्चे हैं वो पूरे चंडीगढ़ के सेक्रेटेरिएट और कहीं वहाँ पे दे आर एब्जॉर्ब्ड एज स्टेनोटाइपिस्ट। मैनी ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव देयर ओन बिजनेसेस, दे हैव स्टार्टेड इट, दे आर सो देयर। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, बेल है पंचकुला में, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितनी भी पेंट बेचते कंपनीज हैं, द वंस विच आर सेलिंग पेंट्स, वेदर इट इज़ फॉर कमर्शियल और हाउस होल्ड पर्पजेज, हमारे बच्चे इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन के वहाँ पे कलर कंसल्टेंट्स लगते हैं, और इसकी आवश्यकता हर घर में है। और देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनर है वो फर्नीचर डिज़ाइन कर सकता है, वो किसी का घर डिज़ाइन कर सकता है। आजकल लोगों का एक ट्रेंड हो गया है कि हमारी कलर स्कीम आके बताइए घर की, सो दे आर ऑलवेज इन डिमांड,
0: और इसी का ही काम बहुत है,
1: फिर आर्किटेक्ट्स उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स, के भी आप हमारे डिज़ाइनिंग कर दीजिए, कलर कॉम्बिनेशंस, कैसे बाथरूम सेटअप करना है, व्हाट शुड बी द

0: color of the garden of my baby's room. That is also there. So ye sab bahut jagah, aur tourism industry is really looking for him. एक और जितनी शॉप्स हैं सेक्टर 17 में, हमारे बहुत सारे बच्चे उनके विंडो डिस्प्लेस करते हैं, दैट टू ऑन अल्टरनेट डेज और इन होटल्स दे आर डूइंग द वर्क एंड दे आर पेड वेरी नाइसली.
1: मतलब सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, कुछ अपने काम में हैं, कुछ काम कर रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो और बड़ी अच्छी बात है कि इसी कॉलेज में चंडीगढ़ में आप पढ़े, यहीं इंटर्नशिप की और यहीं

0: मतलब सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, कुछ अपने काम में हैं, कुछ काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो और बड़ी अच्छी बात है कि इसी कॉलेज में चंडीगढ़ में आप पढ़े, यहीं इंटर्नशिप की और यहीं कहीं आसपास आप एडजस्ट भी हो गए।
1: बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा है। और उसके बाद बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो आगे तो आसमान खुला है, स्काई इज द लिमिट,
0: जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं,
1: उड़ सकते हैं। हमने उनको विंग्स दे दिए,
0: आपने उनको पर दे दिए,
1: पर दे दिए
0: उड़ने के लिए,
1: कि वी हैव गिवन यू विंग्स
0: और डायरेक्शंस दे दी,
1: डायरेक्शंस दे दी, नाउ यू फ्लाई इन द राइट डायरेक्शन।
0: विन दोसांझ जी, इन तमाम बातों के बाद अब जो मेन बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कब तक चलेगा इन कोर्सेज के लिए और फीस क्या रहेगी?
1: हाँ जी, देखिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, काउंसलिंग आजकल चल रही है। जुलाई अगस्त इज द मंथ व्हेन फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग कंटिन्यू। सो डेट्स जो हैं वो, क्योंकि हम पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ हमारी एफिलिएशन है www.punjabteched.net और www.punjabteched.com। सो इन दो वेबसाइट्स पे आप जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद पूरा शेड्यूल उस पे डिस्प्ले,
0: पूरी जानकारी मिल जाएगी,
1: पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई बात है, कोई क्वेरी है, तो वो हमारे कॉलेज में कभी भी 9 से 5 आ सकते हैं। हमारा हेल्प डेस्क है, उनको डायरेक्शंस देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हर तरह से हमारे जो कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स हैं, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज एंड रेडी टू हेल्प द कैंडिडेट्स।
0: तो फीस कैसे रहती है?
1: हाँ जी, फीस के बारे में बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि पूरी ट्राइसिटी पंजाब और हरियाणा में इस कॉलेज की फीस सबसे कम है, ओनली 6,000 रुपीस पर एनम, जो कि कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा इतनी स्कॉलरशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारे यहाँ नेशनल पोर्टल ऑफ स्कॉलरशिप जो है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पे हम बच्चों को बिल्कुल उनकी पहचान कराते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हर कैटेगरी के, फॉर विमेन, फॉर ओबीसी, फॉर एससी, कोई भी बच्चों को गाइड किया जाता है, जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई करिए, वो भी फैसिलिटी है। फिर क्योंकि हम AICT से रिकग्नाइज्ड हैं, तो AICT के जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो भी लागू होती हैं, स्पेशली फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है, ऐसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि हम बच्चों को बताते हैं। हमारा नोडल अफसर स्कॉलरशिप्स है, एक स्पेशल डेजिग्नेशन है
0: जो कि
1: इनकी जानकारी हर बच्चे को देता है और मदद करता है बच्चों के फॉर्म फिल करवाने में।
0: बस आप मन बनाइए और आने की तैयारी कीजिए, आप लोग बैठे हैं
1: बिल्कुल
0: सबकी मदद करने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: तो विन दोसांझ जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपको तो इतने कितने साल हो गए?
1: देखिए जी, आई हैव 42 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस।
0: 42 साल आपने अपनी सर्विस दी है, एक्सपर्टीज दी है। अच्छी खासी एक्सपर्टीज है आपकी इस मामले में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज का मोटो क्या है, विजन क्या है और मिशन क्या है?
1: हमारे कॉलेज का मोटो है जी, एम्पावरिंग वुमेन विद एम्प्लॉयमेंट। और विजन है हमारा टू इनकॉर्पोरेट कॉम्पिटेंट स्किल्स इन वुमेन To create a culture par excellence. और mission हमारा है make ardent efforts to inculcate technical skills, social and ethical values among women to develop a successful economy.
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं लक्ष्य प्रोग्राम में आने के लिए और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 10 के बारे में विस्तार से बताने के लिए। और मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर, जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें एक रास्ता मिलेगा और वो यकीनन आपके कॉलेज की तरफ आएंगे, एडमिशन्स के लिए आएंगे और अपना अपना एक बढ़िया करियर बनाएंगे।
1: बिल्कुल, मेरी भी यही आशा है कि चंडीगढ़ में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल की प्रिंसिपल्स हैं या उनके टीचर्स और बच्चे जो आते जाते अपने पेरेंट्स के साथ, जब भी इस प्रोग्राम को सुने तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक टेक्निकल एजुकेशन लेने से एक बच्चा आम बीए करने से कहीं कहीं ऊपर चला जाता है और

0: सिक्सवीं के बाद देखिए, कई बार बच्चों को होता है कि वो प्लस टू में बहुत सारी ट्यूशंस लेते हैं, जिससे पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा ट्यूशंस पे खर्च हो जाता है। सो सीधा दसवीं के बाद आप डिप्लोमा करिए, उस डिप्लोमे के बाद आपको सीधा डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा,
1: और खर्चा भी खास नहीं,
0: और खर्चा भी खास नहीं, पेरेंट्स के पैसे भी बचेंगे और आपकी पढ़ाई भी रहेगी और फिर आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे।
1: तो दोस्तों, आज के लक्ष्य प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़ विन दोसांझ जी से। इन्होंने अपने कॉलेज के बारे में हमें जानकारी दी, एडमिशंस के बारे में बताया, कोर्सेज के बारे में बताया और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन्होंने बताया। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी रविंद्र ठाकुर ने, प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार, अब आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।
2: हमारे श्रोता सुन रही थी प्रोग्राम लक्ष्य, ये आकाशवाणी है। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर। इस समय 11:30 हुए हैं, तो अब आप सुनेंगे आप ही के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, फरमाइश आपकी।

0: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। अपने सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आपके ढेर सारे खत, आपकी चिट्ठियाँ आज भी हमें मिली हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गीत आपने चुनकर हमें भेजे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये प्रोग्राम और सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: झूठ

तो आपने सुना लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का ये पहला गीत बॉबी फिल्म के लिए। इसे सुनना चाहा हमारे इन सब श्रोताओं ने। आप हैं मंडी अहमदगढ़ से बिट्टू राजा, नरेंद्र शर्मा, सविता शर्मा और पुष्कर शर्मा। इसी गीत को आपने भी पसंद किया। मुल्लापुर मंडी से आप हैं हमारे श्रोता कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन, खनिश शर्मा और खमीशा शर्मा। अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने इसे गाया है। फिल्म का नाम मजबूर। पसंद आप सबकी। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। महादेव घाट अमलेश्वर के आप हमारे श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर।

गीत कौर जोड़ा करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम दमन और अभिजोत, आप हैं हमारे श्रोता। चकला बाजार सामाना से पप्पू राजा, खुश दिल संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, पुराही और आपके परिवार के अन्य सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हमारे श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतक बिरक और मीका बिरक। आप सबने सुनना चाहा है हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत, इसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। पंचकुला सेक्टर 9 के हमारे श्रोता हैं आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक डींगरा। सुनते हैं आप सबकी पसंद।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइश आपकी। मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत और हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर अगला गीत सुनते हैं। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम गंगा की लहरें। पसंद आप सबकी है। गिदड़बाहा पंजाब के आप हमारे श्रोता हैं मंजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल और बेबी हनीशा। आप हैं जी कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। कुछ अन्य श्रोता हैं हमारे, इन्होंने भी यही गीत पसंद किया है। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर गंगा की लहरी फिल्म से ये गीत।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की अगली पेशकश इन सब की पसंद पर। ये है सब्जी मंडी सामाना से शशिपाल कटारिया, मनीष भवी, नेहा, रेनू।

संतोष, गीता और सोनिया कटारिया। आप हैं गांव नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म से गीत।

श्रोताओं, आप सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में। इसे पसंद करते हैं भाटापारा दतरंगी के हमारे श्रोता द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। मुक्तसर से आप हैं बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर

कार्यक्रम का अंतिम गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम है सफर। पसंद आप सबकी। कनेरा मोहल्ला पटियाला के आप हमारे श्रोता हैं। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भाटिया।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइश आपकी। ये कार्यक्रम आपने विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से सुना। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर

0: मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 12:05 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण हम आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रही थी श्रोताओं। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz पर।

श्रोता, इस समय 1 बजा है। अब हम आपको हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। अब से थोड़ी ही देर में 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन सकते हैं 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। पंजाबी समाचार हम आपके लिए जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप 1:15 पर, फिर शाम 5:05 पर भी हम आपको फिल्मी गीत सुनवाएंगे। विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर 1:30 पर। वहीं से 2:00 आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। आकाशवाणी दिल्ली से श्रोताओं, हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करते हैं। आप समय नोट करें 2:15, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 और फिर रात 11:00 भी। मुंबई केंद्र से रिले करेंगे आपके लिए सदाबहार नगमे 2:30 पर। हर रोज 3:00 होता है कार्यक्रम सखी सहेली और शाम 4:00 आप सुना करते हैं पिटारा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में होगी हेलो फरमाइश। हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 5:30 पर।

शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम समाचार दर्शन। कुछ पंजाबी गीत सुनवाएंगे आपको शाम 6:40 पर। शाम 7:47 पर भी आप पंजाबी गीत सुन सकते हैं। श्रोताओं, पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुरसांझ होगा रात 10:32 पर। विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले किया करते हैं शाम 7:00 सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला। हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार सुन सकते हैं आप शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। हवा महल कार्यक्रम होता है रात 8:00। ये कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले होता है। तो आज सुनेंगे श्रोताओ इस कार्यक्रम में झलकी सिलसिला बहनों का। वहीं से फिर नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुन सकते हैं आप रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का है। ये हम रिले करेंगे रात 9:00। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। और आज के फनकार हैं श्रोताओ पार्श्व गायक मोहम्मद

मोहम्मद अजीज। छाये गीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी उद्घोषिका नेहा अगरकर और ये आप सुनेंगे रात 10 बजे। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे आज अब से लेकर रात तक की प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, इस समय 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद श्रोताओं 1:10 पर जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए प्रादेशिक पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने संबंधी खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना व किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चल रहे गणना चरण के दौरान प्रत्येक वर्तमान मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनके संबंध में BLO स्थानीय जांच के आधार पर अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत्यु जैसे संभावित कारण अनुसार डुप्लीकेट सूची तैयार करेगा। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सूची को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित HTET की परीक्षा संयुक्त योग्यता परीक्षा की तर्ज पर पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि HTET परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को परीक्षा के लिए केंद्रों पर सभी पुख्ता प्रबंध करने को कहा गया है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें, पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी। सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए बोर्ड मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर भी उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने और परीक्षा प्रारंभ होने से 3 घंटे पूर्व आसपास फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखे जाने की हिदायत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों के परीक्षार्थियों के केंद्र दूसरे जिलों में बने हैं, उनके लिए परिवहन विभाग को निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों के अलावा परीक्षा के समय अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुरगढ़ तथा महेंद्रगढ़ में ही उपमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 4 व 5 जुलाई को

तीन चरणों में ली जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पहुंचने की संभावना है। इस बीच चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में रात और आज सुबह कई जगह पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 7 जुलाई तक दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज जीएसटी दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST आयुक्तालय द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कर अनुपालन, समय पर कर भुगतान तथा राजस्व संवर्धन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले करदाताओं को सम्मानित किया गया। CGST फरीदाबाद के आयुक्त रियाज अहमद ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विभाग पारदर्शी, सरल और करदाता अनुकूल प्रशासन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी यादविंदर सिंह तो प्रदेशक खबरां सुनो। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद च स्थित 125 साल पुराने इतिहासक गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब नूं ढाउण की सख्त निंदा की है अते इस नूं बेहद निंदनयोग अते निशाना बना के की गई भनतोड़ वाली कार्रवाई दस्या है। गुरद्वारा साहब नूं ढाउण के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने इस घटना उत्ते गंभीर चिंता प्रगट की है। नाल ही स्थानक अधिकारियों या इवैकुई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों कोई सार्थक कार्रवाई न किए जाने की भी जानकारी उन्हें दसिया कि यह कोई इकली घटना नहीं है ते इस तो पहला भी इस तरह दी खबर आईया ने। बुलारे ने कहा कि पाकिस्तान विच धार्मिक घट गिणतियां अते उन्हां दे धर्म स्थानां नूं निशाना बनाउणा लगातार जारी है। पंजाब दे खजाना आपकारी ते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दसिया है कि सूबे ने माली साल 2026-27 की पहली तिमाही लई वस्तु ते सेवा कर GST दी उगराही च 24.45% का शानदार वाधा दर्ज किया है। इस दे नाल ही GST रीफंड के रूप में 1,270 करोड़ रुपए जारी किए गए ने। माली साल 2026-27 की पहली तिमाही की कारगुजारी बारे खजाना मंत्री चीमा ने कहा कि कुल GST उगराही वध के 7,833 करोड़ रुपए तो वध हो गई है। GST 1,538 करोड़ तो वध, वैट CST उगराही च 242 करोड़ तो वाधा वाधा सूबे की माली स्थिति की स्पष्ट मजबूती दर्शाता है। इकले जून 2026 की गई कार्रवाई का वेरवा दिंदिया मंत्री ने कहा कि इस दौरान 225 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। फर्जी बिल बनाउण ते धोखादेही वाली रजिस्ट्रेशन शामिल फर्जी टैक्स अदायगी करन वालियां विरुद्ध 20 मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब राज खुराक कमीशन के चेयरमैन बालमुकंद शर्मा ने खुराक कमीशन दी सिफारिशों का हवाला देंदे हुए बच्चों की सेहत के मद्देनज़र हर स्कूल विच पोषण बगीची बनाना लाजमी करन लई कहा है। उन्होंने कल मानसा के जिला प्रशासकीय कंपलैक्स च अधिकारियों नाल मीटिंग दौरान निर्देश दिते कि आंगनवाड़ी केंद्रां दे लाभपात्रियों तक सारिया भलाई योजनावां दा 100% लाभ देना यकीनी बनाया जाए। श्री शर्मा ने फूड कमीशन दा हेल्पलाइन नंबर हर आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी स्कूल, राशन डिपो अते सरकारी दफ्तरां उत्ते साफ तौर ते लिखण लई कहा तां जो कोई भी व्यक्ति शिकायत देण लई संपर्क कर सके। अज जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप तो सख्त सुरक्षा दरमियान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा लई 4,822 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे नूं रवाना किया। साढ़े जम्मू वाले पत्रकार ने खबर दिती है कि उप राज्यपाल ने पहलगाम अते बालटाल दोवां रूटां लई श्रद्धालुओं नूं रवाना किया। इस पवित्र यात्रा च हिस्सा लैण लई देश दे वख-वख हिस्सों तों श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे ने। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जिस विच बालटाल रूट लई 2,312 अते पहलगाम रूट लई 2,510 तीर्थ यात्री शामिल ने। 147 वाहनों के काफिले विच रवाना होए। पंजाब दे पुलिस थाणियां च लंबे समय तों खड़े अनअधिकारत ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7,402 ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 55,721 ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

खुदगर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज के गाए हुए कुछ युगल फिल्मी गीत। आपको बता दें, आज ही के दिन यानी 2 जुलाई को मोहम्मद अजीज का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और हिंदी फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से वो एक थे। उनका गाया हुआ अगला गीत सुनवाते हैं आपको, उससे पहले ये संदेश सुन लें।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: मोहम्मद अजीज के साथ अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

आपको बता दें श्रोताओं, मोहम्मद अजीज 1980 और 1990 के दशक के सबसे व्यस्त पार्श्व गायकों में शामिल थी। उन्होंने लगभग 20,000 गीत अलग अलग भारतीय भाषाओं में गाए। बहुत सारी फिल्में थीं जिसमें बहुत सारे मशहूर गीत उन्होंने गाए हैं। कुछ फिल्मों के अगर हम नाम लें तो लाल दुपट्टा मलमल का, राम लखन, मर्द, खुदगर्ज, बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं। तो आइए अब सुनते हैं उनके साथ कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम है चालबाज।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने मोहम्मद अजीज के गाए युगल गीत सुने। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा प्रसारण अब विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। उससे पहले ये एक संदेश।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिधि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन मोहाली से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
2: दो चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। एक तो बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो दे आर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, है ना, पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, तो अगर किसी को भी खांसी जुकाम है तो एक दूसरे में बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। फूडबॉल इलनेसेस भी बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है एक दूसरे में। इस टाइम पे मानसून का भी रीजन होता है, वायरल इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्रेफरेबली कुछ दिन घर पे रेस्ट कराइए, उसको स्कूल मत भेजिए। और दूसरा, खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे घर का ही खाना दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: तो आइए अब सुनते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर,
3: जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
4: नहीं नहीं,

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है।

ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे। बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए। फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी। वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे, जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली हैं। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है। सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावरवेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का, लिखा है ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है, इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे ही रजनीगंधा की भीमी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह, धीरे धीरे ये मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है और बड़ी खुशी की

0: बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुँचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द

कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

दोस्तों, सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भला

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त

0: राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब

मधपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ @ER News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती।

आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की

0: सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं ना, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे जी रहे हैं। और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं, और आनंद का जो
0: क्षण होता है
1: वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
0: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे है ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है, मुझे कुछ

0: कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पे लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है
1: जी। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए?
1: गीत सुनना चाहिए।
0: तो सुनते हैं गीत।
2: फूलों का शबाब उसमें फिर

0: दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती है। जी, और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था। और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जी सम्मानित कर दिया गया। जी,
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस

0: समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे,
1: तो एक गाना सुनते हैं।
0: चलिए,
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमा।

0: ना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा, हम कई बार ऐसे
2: हमारा चेहरा वैसा ही हो जाए,
1: वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लार दुलार किया, अब ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो इज्जत करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
2: और
1: सारी।
2: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
2: जी,
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है और फिर वो बातें पता नहीं कहां तक चली जाती है।
2: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
2: क्योंकि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारी सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे। यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन तस्वीर

0: तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी ऐसा जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था

0: सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था, अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है जो अब दुनिया में नहीं, उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपनी यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी,
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल की भाई, शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: ऐसा
0: ही काम करते थे।
1: हाँ, लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों

0: की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है, उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपनी ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं, तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती, तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समय कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर
1: सकती है,
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को ही

0: उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुन ले एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमान तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और ये सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा,
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा
1: होता तो
0: है ना। और नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके बारे में सोचते
0: रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आप

0: आपकी दिखाई देगी। और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है। कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है ना, जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में, और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी दो तीन दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से एक दो घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसका ये उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं बताना चाहता हूं कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूं, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोनिंग प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक पार्टनर से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ आपका, तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल का रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: आओ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने की शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अजमर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नीलित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: आज ही, आज ही है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी,
1: जी सर, नूतन सुनील दर्शन फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पाटीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसा हल रहा है कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम तो गाना ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केवल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य तो इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: बोले है, घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सज्जन आ
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए नए दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधुक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विद भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए विद भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विद भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विद भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मंच चाहे गीत।
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितनी भी मेरी बात की प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे कि आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात की सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो अच्छा। करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। हाँ। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसे होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे ये गाना सुनने।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, टक्कर सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की टू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूँ शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन, आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरदीप बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देकर चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर कटिहार जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: है जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गाँव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर, मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है।
0: जी,
1: मैकेनिक का काम में करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यही अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था घर की, मैं कभी दूध भाती में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका?
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फ्रिज का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनाइजर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी, बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है। श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जना फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन बहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बहरात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते हैं?
1: बहरात के समय जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बहरात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ।

0: दोबारा हमेशा ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंडी रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ।
1: फिर भी आपकी नजर से वो गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं, कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं, वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना, और दूसरा जाना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
1: जी जी जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं, नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
1: जी जी,
0: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है, तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसे चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहीं की सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जे कहो सर,
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें

0: 8 और दूसरा नंबर है 0224002462। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 0222860288 और दूसरा नंबर है 0224002462। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनाओ रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
3: FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
5: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौता

0: रबते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं तेरे मेरे सपने फिल्म के गीत से। आवाजें हैं साधना सरगम और हरिहरण की।

प्रेम संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वंश फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और एसबी बालासुब्रमण्यम की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जांबाज फिल्म में किशोर कुमार और सपना मुखर्जी को। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

जाबाज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी।

0: वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है, इसे तराशा जाता है, और हाँ ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं।
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे।

0: जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारे ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये

0: इंपॉर्टेंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। सिद्धार्थ
5: ने बताया होगा कैसे?
6: देवदत्त तो कार्य उनका है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो,
8: महाराज जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत।

0: आप तैयार हैं?
1: जी हम तैयार हैं।
0: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौरयान आदित्य L1 के बारे में।
2: आदित्य L1 के बारे में?
3: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
4: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
4: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
0: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
5: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
0: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
5: जी मेरा नाम श्रुति है।
0: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
4: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
1: अच्छा सर।
7: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
5: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
7: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
7: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आए कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
1: जी सर।
5: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
7: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
5: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
7: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
7: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर।
5: सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों

0: को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
3: शाबाश बच्चों, शाबाश।
0: खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाए।

0: श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती के अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग या संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके का लाभ ले सकते ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तो सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई। FM 107.2 MHz ते असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां कालीचरण फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर दी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲੀਚਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ, ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ। FM 107.2 MHz ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 6:10 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, विकसित भारत जी राम जी मिशन गांवों के विकास में तेजी लाएगा। जींद के नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी से जिले में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारम्भ किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया। हरियाणा पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने एक कार से 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। और हरियाणा में मॉनसून का आगमन, अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश जारी। मॉनसून के पूरे हरियाणा में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविकों को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज तिरुपति जिले के एक गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,000।

0: 282 करोड़ रुपया।
1: जींद के अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आज नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी में अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय श्रमिकों के साथ तालाब से मिट्टी खुदाई व उठान के कार्य में शामिल होकर वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला जींद में धरोदी गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के लागू होने से श्रमिकों के रोजगार, आजीविका एवं आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और साथ ही ग्रामीण विकास को और गति मिलेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा पहले से संचालित मनरेगा योजना को संशोधित कर श्रमिकों के हितों को और अधिक प्राथमिकता दी गई है। योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन सालाना रोजगार की गारंटी होगी। योजना के दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें तालाब, नहर, माइनर, राजवाहा, वाटरवर्क्स, स्कूल, शमशान घाट, जल प्रबंधन, पौधारोपण, खेतों के रास्तों में रख रखाव, सफाई व सुदृढ़ीकरण जैसे अनेक गतिविधियों को शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करें। श्री ए श्रीनिवास आज चंडीगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक कर रहे थे। राजनीतिक दलों से इन बैठकों की तिथि व समय की जानकारी, चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को अग्रिम रूप से सूचित करने और बैठकों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 14 जुलाई तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर को होना निर्धारित हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गणना फॉर्म वापिस नहीं मिले हैं, वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसे संभावित कारणों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, उनकी बूथवार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जनता की सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे बीएलओ को सौंप सकता है। जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में वृद्धि से राज्य के करीब 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2100 रुपये की वृद्धि की गई है। श्री देवेंद्र अत्री ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: कि हमारी सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी एक वादा किया था कि पहले युवाओं को नौकरी देंगे, 25,000 युवाओं को, उसके बाद शपथ लेंगे। जवान के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले वादा पूरा किया, 25,000 युवाओं को नौकरी दी, उसके बाद शपथ ली। इसी प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारियों को भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 2100 रुपये की बढ़ोतरी करके। हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस वादे को पूरा किया है। मैं सब हमारे सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हिसार पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने एक कार से 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ की टीम ने गश्त के दौरान एक सूचना मिलने पर रायपुर चौक के निकट नाकाबंदी की। पुलिस टीम को देखकर कार में सवार तीनों युवक वाहन को मौके पर छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। तलाशी के दौरान कार से 3 प्लास्टिक के कट्टों में रखा 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। बरामद डोडा पोस्त एवं तस्करी में इस्तेमाल कार को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभ

0: एक जांच में कार राजस्थान के करौली जिले में पंजीकृत पाई गई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में मानसून का आगमन हो गया है। कल रात से प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल खीचड़ ने कहा कि मानसून के पूरे हरियाणा तक पहुंचने में अभी समय लगेगा।
1: हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कल देर रात्रि के बाद में बारिश शुरू हुई है और गरज चमक के साथ, और अपने हिसार में भी 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो सुबह 8 बजे तक। उसके बाद में कुछ एक स्थानों पर बारिश है। आज भी दक्षिण हरियाणा में और उत्तरी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर बारिश हो रही है, तो ये लगातार अभी चलेगी। कल और दो दिन तो थोड़ा कम है, परंतु 4 जुलाई के बाद में 7 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। मानसून 8 जुलाई तक एक्टिव रहेगा और 8 जुलाई तक कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है, परंतु ज्यादातर स्थानों पर कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश।
0: उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी में थोड़ी कम बारिश हो सकती है। दक्षिण हरियाणा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक है। धान की रोपाई में इस बारिश से फायदा होगा। बाजरा और अन्य फसलों की भी अब बिजाई हो सकेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी की कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की एक दिवसीय परीक्षा एवं सेकेंडरी और की कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय की जुलाई 2026 की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लाइव कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, विकसित भारत जी राम जी मिशन गांवों के विकास में तेजी लाएगा। जींद के नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी से जिले में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय रेल राज मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब के मुख्य चोण अफसर अनंतता मित्रा ने कहा, सूबे च पहली जुलाई तक 97.44% गणना फार्मा की वंड मुकम्मल हुई। सेहत मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस को समर्पित पहले सूबा पदरी सम्मान समारोह च सरकारी ते निजी हस्पतालों के डॉक्टरों ते अधिकारियों नूं कीता सम्मानित। सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026 तहत लुधियाना च विद्यार्थियों नाल कीता सीधा संवाद, कहा सूबे च जल्द ही AI पाठ्यक्रम शुरू होगा। अते मौसम विभाग वल्लों अज तों 7 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च कई थावां ते भारी मीह बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब च कई थावां ते मीह पिया। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
2: ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

0: पहचान की जाएगी, उसे पेंशन देने का माध्यम क्या होगा।
1: किसान सम्मान निधि योजना पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा,
0: 2022 में जब से ये योजना आई है पीएम किसान सम्मान निधि, जो पात्र किसान थे उनके खाते में 300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जींद जिले के किसानों के खातों में अटक जा चुकी। ये 2000 रुपए जो योजना का नामकरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को सम्मान स्वरूप दी जाती है जो उसकी पहचान का प्रतीक है। और फसल बीमा योजना, जिस तरह से दूसरी घरेलू वस्तुओं का बीमा किया जाता है, किसान को ये एक तरह से आश्वासन रहता है कि उसकी फसल का भी बीमा है और किसी भी तरह प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार की स्कीम उसके लिए सहायक होगी।
1: पंचकुला में कृषि विभाग के उपनिदेशक राकेश ने सरकार द्वारा चलाई योजनाओं को किसान हितैषी बताया।
2: इन 12 वर्षों में एनडीए सरकार ने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए कई स्कीमें चलाई हैं, जिनमें से एक स्कीम पीएम किसान अर्थात प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है। इस स्कीम के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कुल 6000 रुपए की राशि का वितरण 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 महीने पश्चात किया जाता है। इस स्कीम के तहत किसान 2000 रुपए जो किस्त आती है उससे खाद बीज दवाई आदि परचेज खरीद सकता है, जिससे उसको अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को कोई भी प्राकृतिक आपदा कीटों और रोगों के कारण फसल हुई खराब होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
1: श्री राकेश ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पंचकुला जिले में किसानों को लाभ का जिक्र करते हुए कहा,
2: मैं यह बताना चाहूंगा कि कृषि विभाग पंचकुला ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2019 से अब तक 22,627 किसानों को यह राशि वितरित की गई है, जो कि तकरीबन 84 करोड़ रुपए है। तथा इसी प्रकार फसल बीमा योजना के अंदर 52,608 लाभार्थी हैं, जिनको अब तक इस योजना के तहत 330 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। सरकार ने एक नई योजना प्राकृतिक खेती भी आरम्भ की है, जिसमें कम दवाई और खाद प्रयोग करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा और प्रति एकड़ अगर किसान प्राकृतिक खेती करता है तो उसको देसी गाय खरीदने पर 30,000 रुपए प्रति गाय का अनुदान भी उपलब्ध है।
1: अंबाला में कृषि विभाग के एक अधिकारी दीनदयाल शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं का जिले के किसानों को निरंतर लाभ मिल रहा है।
3: केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, जिनका लाभ जिला अंबाला के किसानों को निरंतर मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर बात करूं तो योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनको दी जाती है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री जी के तरफ से, उसमें अभी तक 2016 से लगभग 55,236 किसानों को 93,16,00,000 रुपए का अनुदान उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। बीमा दावा राशि प्रदान की जा चुकी है। यह सहायता किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाता है। उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है।
1: श्री दीनदयाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए और भी कई स्कीमें चलाई हैं।
3: इन किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की सुरक्षा बनाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। तो ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहा है। केंद्र सरकार की तरफ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती होगी, अन्य स्कीमें भी चलाई जा रही है, जैसे किसान की आय दुगनी हो इसके लिए अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटों पे सब्सिडी दी जा रही है। प्राकृतिक खेती के तहत गाय, देसी गाय खरीदने पे भी सब्सिडी मिल रही है। और इन 12 सालों में मोदी जी की तरफ से जो भी किसानों के लिए स्कीम चलाई जा रही है, उनका भरपूर फायदा किसानों को मिल रहा है और वो सभी लाभ उठा रहे हैं।
1: कैथल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक रविंद्र सिंह ने अपने जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिल रहे लाभ पर बातचीत की।
4: पिछले 12 वर्ष में भारत सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई गई हैं। उन स्कीमों में से एक प्रमुख स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानों को प्राकृतिक जोखिम से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए यह स्कीम 2016 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी और 2016-17 में 8,480 किसानों द्वारा फसल का बीमा करवाया गया। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि फसल

0: जोखिम से कोई नुकसान ना हो। और 2018-19 खरीफ में किसानों ने 20,447 किसान बेनिफिट हुए और 48,498 किसानों ने फसल का बीमा करवाया। 2016 से 2025-26 तक अब तक 5,78,000 किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया है और इनमें से लगभग 1,10,000 किसानों को इस बीमे का राशि का लाभ हुआ है। कुल मिलाकर इस 10 साल में किसानों को 124 करोड़ रुपए वितरित भारत सरकार द्वारा किए जा चुके हैं।
1: हमने किसान कल्याण योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से भी बातचीत की। भिवानी के गांव पालवास के किसान नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उनके हित में कई योजनाएं लागू हैं।
2: केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की है किसानों के हित में, जैसे नमो ड्रोन दीदी, कृषि के उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, किसान के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान की 24 फसलों पर MSP पर खरीद, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करना और गरीब किसान के लिए जो औजार प्रयोग में होते हैं उनके लिए ऋण प्रदान करना, ऐसी कई योजनाएं किसानों के हित में है।
1: जींद में एक किसान सुनील चहल ने हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया दी।
3: ये जो मोदी साहब ने जो अपने स्कीम चलाए ना किसानों के सम्मान के लिए, ये बहुत अच्छी स्कीम है। जिस टाइम ये किस्त आती है तकरीबन ये महीने ऐसे हैं जिनमें जमींदार के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ तो सहारा लगता है आदमी को, खाद बीज कुछ तो ले आता है और ये किस्त बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है। अब 23वीं किस्त मेरी परसों शाम को टाइम टू टाइम मैसेज आया, मैंने शाम को सोने के वक्त 9 बजे चेक किया, उससे पहले आ चुकी थी किस्त। बहुत अच्छा कर रहे मोदी जी, उनका दिल से धन्यवाद।
1: जींद के किसान दलबीर सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जरूरतमंद किसानों के लिए बहुत लाभकारी बताया।
4: PM किसान सम्मान निधि है, ये बहुत अच्छी योजना है, किसान को इसको अच्छा लाभ मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि और भी इसी प्रकार की किसान कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं लागू करें और धरातल पर किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हम प्रधानमंत्री का सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं, किसान का विकास ही देश का विकास है। देखिए जो किस्त मिली है 2,000 रुपए किसान के सीधे खाते में आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का हमने बैंक के चक्कर नहीं काटने, किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने। सरकार पैसे डालती है और सीधे किसान भाई को पैसे मिल जाते हैं, जो जरूरतमंद जरूरतें हैं उसको पूरा करता है।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।
5: हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम समाचार दर्शन। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz से पेश कर रहे हैं कुछ पंजाबी गीत। प्रोग्राम दे शुरू च आओ सुनते हैं जैजी बी नूं।

आकाशवाणी चंडीगढ़ तो ऐसे ले तो से सुन रहे हो पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम चाहो हम सुनते हैं गुरु रंधावा की आवाज़ च ये गीत।

0: ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। FM 107.2 MHz ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिधि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन मोहाली से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
3: दो चीजें आप इकट्ठी हो जाती है, एक तो बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो दे आर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, है ना, पेरेंट्स के बीच में रहते हैं, तो अगर किसी को भी खांसी जुकाम है तो एक दूसरे में बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। फुटबॉल इलेक्ट्रिस भी बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है एक दूसरे में। इस टाइम पे मानसून का भी रीजन होता है, वायरल इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्रेफरेबली कुछ दिन घर पे रेस्ट कराइए, उसको स्कूल मत भेजिए। और दूसरा, खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे घर का ही खाना दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए।
2: यह संदेश एलएमबी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: थोड़ी देर से तुसे सुनोगे प्रोग्राम जयमाला। ये प्रोग्राम असी विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत सचिन देव बर्मन का था, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और अब लता मंगेशकर की आवाज गूंज रही है,

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। शाम के 7:15 जय माला।
1: क्या कहा?
0: यूनुस खान के संग।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। लो हुण पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी मिशन पिंडां दे विकास नूं तेज़ करेगा। हरियाणा दे मुख चोण अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक पार्टियां नूं वोटर सूचियां दे विशेष तीबर सोध प्रोग्राम दे अनुसार अपने बूथ पदरी एजेंटां दीआं बूथ पदरी अधिकारियां नाल मीटिंगां दा आयोजन करन दा सद्दा दित्ता। हरियाणा च वीबी जी राम जी योजना लागू की गई। विकास ते पंचायत मंत्री किशन लाल पवार ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा विच पूरे देश नालों सब तो वध 409 रुपए की रोजाना मजदूरी मिलेगी। विकसित भारत जी राम जी योजना जींद जिले विच नरवाणा उपमंडल के तरोडी पिंड तो शुरू की गई। हरियाणा पंजाब ते चंडीगढ़ विच मानसून पहुंचे। ज़्यादातर जिलों च रुक रुक के बारिश हुई। आने वाले दिनों में मानसून सरगर्म रहेगा। हरियाणा पुलिस के एंटी नारकोटिक सैल ने हिसार विच एक कार विचों 53 किलो 240 ग्राम पुक्की बरामद की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह संधू के देहांत ते डूंगा दुख प्रगट किया ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेट की। हरियाणा स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने सीनियर सैकेंडरी की कंपार्टमेंट अंशक सुधार ते वाधू विषय की एक दिन की प्रीख्या ते सैकेंडरी की जुलाई 2026 की प्रीख्या लई दाखला कार्ड बोर्ड की अधिकारित वैबसाइट ते लाइव कर दिते ने। उचाना विधानसभा हल्के तो भाजपा विधायक दविंदर

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उर्फ हमारे लेज लतीफ पतिदेव अभी तक नहीं लौटे।
2: सिकंदर भाई, सिकंदर भाई।
1: कौन कौन है? अरे भट्ट भैया आप?
2: नमस्कार भाभी, सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसी गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
1: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो भट्ट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला,
2: ट्यूशन पढ़ने? तू नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
1: नहीं तो।
2: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
2: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की।
1: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
2: मिक्सी? इमाम दस्ता वो?
1: पर भट्ट भैया बात क्या है, कुछ बताओ तो भट्ट भैया।
2: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
1: चप्पल?
2: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
3: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना अभी तक। फिर? अरे फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं, मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
4: सर तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसक।

0: विलंबित
1: सर वो
2: देखा मिस्टर भट्ट
3: विलंबित जो ठहरे सुपरिटेंडेंट सा है
2: तो श्रीमान विलंबित जी अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है
1: जी सुपरिटेंडेंट साहब वो बात ये
2: है कि बोलो बोलो मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना
1: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिटेंडेंट साहब
2: अरे मगर क्यों अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं
1: जी वो मैं समझा नहीं सर
2: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे हैं
1: कैसा सिलसिला
2: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई
1: जी हाँ जी हाँ
2: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे
1: जी हाँ
2: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके
1: जी हाँ ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर
2: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया
1: जी हाँ,
2: जी हाँ, अपने ससुर जी की पहली बरसी पर
1: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस
3: मगर सिकंदर भाई अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई तुम्हारे तो शायद दो दो साले हैं
1: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा
2: ओ आई सी
1: जी सुपरिटेंडेंट साहब ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था
3: जी हाँ सुपरिटेंडेंट साहब आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का पत्नी का पिता अपना पिता
1: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट देख लिया सुपरिटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब
2: छी छी छी इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर एक तो आप लेट आए
1: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे डांटने का हर सर आपको है सेक्शन इंचार्ज को है ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर दे शुड सी देयर ओन वर्क अपना काम देखें
3: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर जब आप सीट पर नहीं होते
1: ऐसे ऐसी कौन सी आफत आ रही है
2: टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते
1: सर
2: घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है
1: नहीं
2: चलिए चीफ के पास
1: नहीं सुपरिटेंडेंट साहब कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता
2: क्यों आज क्या हुआ बोलो
1: वो सर मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर
3: What? अरे ये कैसे हो गया सिकंदर
1: सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट रास्ते में चप्पल भी टूट गई
2: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा
1: हाँ सर प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा मुझे पता था सर के अर्जेंट पेपर डील करने
2: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर
1: ऑलराइट सर
3: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे
1: वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर
2: ओह माय गॉड अब कैसा है तुम्हारा
1: लड़का क्या मालूम कैसा है सर मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखूंगा
3: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर क्यों सुपरिटेंडेंट साहब
2: हाँ, कोई बात नहीं मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है
3: वो मैं देख लूंगा सर आप इसे जल्दी जाने दीजिए हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर
2: अच्छा मिस्टर सिकंदर अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है एक दो घंटे बाद चले जाना
1: थैंक यू सर मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू
4: हाय राम 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंची और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है
3: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं मैं सब समझ गया हूँ हद होती है बहानेबाजी की भी मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
4: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं
3: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं
4: पक्के से पक्के कहो बट भैया कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए अरे भैया तुम उनके साथ ही हो किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत हम तो भट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं
3: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी उनका रोज रोज का लेट आना नित नए बहानों का सिलसिला वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें
4: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट भैया
3: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं घर वालों का भी कोई फर्ज होता है
4: नहीं नहीं भैया यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है
3: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई बुरा तो मानेंगे मगर

0: हाय राम, अभी तक गुसल खाने के फुहारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं।
1: अजी सुनते हो?
2: अरे क्या है, आ रहा हूँ।
1: घंटे भर इस फुहारे की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की।
2: अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
0: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे।
2: बिल्कुल
0: हो। मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे? फंसोगे किसी दिन बुरी तरह, श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
2: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पका कर हमदर्दी जगाने लगता है और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
0: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लतीफ।
2: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
0: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
2: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर्द। ओके बाय।
3: ये सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ।
2: मर गए। अरे सुपरिंटेंडेंट साहब, तो वो बैठे भीतर कमरे में।
3: यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आए सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
2: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊ लेटाने का। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाऊँ घर लौट जाऊं और बीमारी की छुट्टी मार दूं। अरे नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है। ये चाबी लेने मेरे घर पहुंचे तो इस अर्जेंट केस के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं इस इमरजेंसी की घड़ी में। अरे वो मारा, ये कुछ हुई ना नई बात है। ठीक है,
4: गुड मॉर्निंग सर।
5: ओ यू विलंबित के बच्चे।
4: यस सर।
5: आज तुमने मेरी सारी इज्जत पट्टी में मिलवाई।
4: नो सर।
5: मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया।
4: नो सर।
5: मैं तुम्हें डिसमिस कराकर छोड़ूंगा।
4: नो सर, नो सर।
5: यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट।
2: मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिंटेंडेंट साहब।
5: क्या सुनिए तुम्हारी?
2: मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती
5: है। व्हाट इमरजेंसी? क्या हुआ, कौन मर गया, कौन अस्पताल चला गया, बोलो।
2: सर मेरी पत्नी सर।
5: क्या?
2: मेरी बीवी।
6: क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
2: एकदम से वो उल्टियां सर, उल्टियां सर, उल्टियों पर उल्टियां सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां सर, मैं घबरा गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर,
6: तब तक क्या क्या हुआ, क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
2: सर।
6: हाँ बोलो।
2: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर। सर के वो,
6: हाँ बोल भाई बोल।
2: वो हाँ, पाँव भारी है।
6: पाँव भारी है, यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली।
2: आपको कोई तकलीफ है?
5: ऐसे शट अप
2: जी,
5: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
2: सुपरिंटेंडेंट साहब, आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
5: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पाँव भारी है। इट इज इम्पॉसिबल।
6: माफ कीजिए सर, मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं।
2: यस सर,
6: सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आ ही जाएगी सर।
5: सच्चाई।

0: सर।
1: अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो?
0: यस सर।
1: तो ये देखो, ये रही सच्चाई।
2: ये कैसा कागज है सर?
1: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
0: यस सर। अरे सर, ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
1: ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
2: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
0: यस
2: सर। कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का?
1: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
2: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
1: ये भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज? बोलो।
0: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
1: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
0: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
1: आई विल सी दैट यू आर डिसमिस्ड।
0: आई विल नॉट मेंबर हो जाऊंगा सरकार, मर जाऊंगा सरकार। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गली में बंदा था, ये बंदा उठा मेरे गले।
3: सिलसिला बहानों का। अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।

आइए सुने चित्रलोक। सुनिधि चौहान की आवाज में चमेली फिल्म का गाना, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिली की तरह से।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।
1: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान, गर्दिशों में है सितारे, बात हमने मान ली। अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं, गली के आज हाथ थाम

परिणीता फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना। अब मोहित चौहान और ए आर रहमान की आवाजों में ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को

0: बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग

0: की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को

0: कि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में अंगूठी।

0: बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के

0: जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल को तोड़ दे दम, मरते दम तक जले ये दम दम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

0: मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।
1: इस

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

आशा भोसले के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी हमारी जुबान पर अचानक आ जाता है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

हाय गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुराकर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूं तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूं जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हो, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: आज के छाया गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। लहून पेश ने मुख्य प्रादेशिक खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री ने कहा है कि

0: क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते असि आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। लोहन पेश ने मुख्य प्रादेशिक खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी मिशन पिंडा दे विकास नूं तेज करेगा। हरियाणा दे मुख्य चोण अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक पार्टियां नूं वोटर सूचियां दे विशेष तीबर सोध प्रोग्राम दे अनुसार अपने बूथ पदरी एजेंटां दीआं बूथ पदरी अधिकारियां नाल मीटिंगां दा आयोजन करन दा सद्दा दित्ता है। हरियाणा विच वीबी जी राम जी योजना लागू कीती गई। विकास ते पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि इस योजना दे तहत हरियाणा विच पूरे देश नालों सब तो वध 409 रुपए की रोजाना मजदूरी मिलेगी। विकसित भारत जी राम जी योजना जींद जिले विच नरवाणा उपमंडल के तरौडी पिंड तो शुरू की गई। हरियाणा पंजाब ते चंडीगढ़ विच मानसून पहुंचा है। ज्यादातर जिलों च रुक रुक के बारिश हुई। आने वाले दिनों च मानसून सरगर्म रहेगा। हरियाणा पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सैल ने हिसार विच एक कार विचों 53 किलो 240 ग्राम पुक्की बरामद की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह संधू के देहांत ते डूंगा दुख प्रगट किया ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। हरियाणा स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने सीनियर सैकेंडरी की कंपार्टमेंट अंशक सुधार ते वाधू विषय की एक दिन की प्रीख्या ते सैकेंडरी की जुलाई 2026 की प्रीख्या लई दाखला कार्ड बोर्ड की अधिकारिक वैबसाइट ते लाइव कर दिते ने। ते उचाणा विधानसभा हलके तो भाजपा विधायक दविंदर अत्री ने कहा है कि पेंडू सफाई कर्मचारियों के मासिक माण भत्ते विच वाधे नाल राज दे लगभग 11,000 पेंडू सफाई कर्मचारियों नूं लाभ होएगा। इह सन हुण तक दीआं मुख प्रादेशिक खबरां। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हां, पेश कर रहे हां प्रोग्राम सुरसांझ। प्रोग्राम दा पहला गीत एएस कंग दी आवाज़ चे।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सुर सांझ। प्रोग्राम च आओ हुण सुनदे हां दिलजीत दोसांझ दी आवाज च ये गीत।
6: लंबर गिनी ते

FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला सुरसांझ प्रोग्राम के आखिर पेश कर रहे हैं। नछत्तर गिल, सलीम, गुरमीत सिंह ते श्वेता पंडित दी आवाज़ां च एह गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असि आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले रात के 11:05 से 15 सैकेंड हुए ने। साड़ी अज की यह सभा हुण खत्म होंगी है। कल सवेरे 5:55 से